0: मच्छा में सभी चरुआ, मच्छी ने अल्ला ये गिडुवा।
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.